सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जल ले तो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ, तो हट जाए
1: हो जाए।

0: This is Sunrise Retro.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
3: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. PlayOjo.
3: 18 plus, gamble aware.
5: London ka retro Asian mix, Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स. कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777. Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

0: किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: This is Sunrise Retro.
1: ये है Sunrise Retro.
2: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला